0: सोच एवं चिन्ता तनावबाट मुक्त रहँदा मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
0: चिनी पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
1: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
0: स्वस्थ रहौँ।
2: रेडियो गोपाला एफएमद्वारा जनहितकारी सन्देश।

आज वो जमीन में खेती सशक्त यह बादलों को खबर प्रकाशित बादलों में सिंचाई को पहुंच पुगे किसान राहत दिया बादलों जिला 6944 हेक्टेयर खेती

उन्हें परिवार आकस्मिक बाढ़ी को जोखिम शीर्षक में तुफानी कप्तान लेख् खबर बाजर मकई जगह तहरा में पहरा शीर्षक में हरिबहादुर जम

0: सभा को दिमाग में बने कि सर्वोपरी नहीं होना सब मान्य पी बिहानी राख पड़ने अवस्था यहां कसरी देखा
1: सभापतिको

लखनऊ शायद रवान हुए शायद देर से वो भी खन पाते थे खन पाते थे और वहां से गाय पे इंतजार के सब चीज खत्म हो गया बंगला तक पहुंच गए थे और बंगला तक पहुंच गए थे और गाय मिल गए वहां पर दाना पकड़ लिया है तो लखनऊ शायद बाहर हुए ये तो शायद तो बाबा का हो गया लखनऊ का बुखार दे रहा है ये सब कुछ नहीं है अरे वो शायद तो हमारे देखे पाया जाए दरवाजा एक मिनट पर ऐसा हूँ मैं तो जगवा पहले जाऊंगे और जगवा पहले पढ़े जाए तो शायद तो पार्टी मोबाइल लेके उस माटी घोर हार के बाद

साथ है वो हम उठाए एक से चार उठा दे तो कहूँ दस से चार उठा दे अरे मैं बीस को ना मार कर तो मैं ले ली हाँ चावल ले तो कहूँ मतलब बिल मार हाँ तो जाए अरे मैं कटवो हाँ कोई कोई मैं खाली पाँच दस लेट कर जाए तो चलने के लिए कहाँ कोई कोई लिखा लड़का हो फिर अगर मैं ही जवान तो कहूँ मैं कटवा को बंदे मार कर अरे सब कोई नहीं क्या वो अरे सब कोई जान मजा मेहताब कम जान सब दौड़ में तो भगवत नहीं जान मैं तो भगवत नहीं जो पढ़े जाओ मैं हम उसे लगभग मैं दो क्लास तक करते हुए लगा के सब घरे को लेकर सब भगवत ले जा रहा है तो जल मटे की बात कच्ची सुनवार फैलाओ जुड़ते अस्पताल में जुड़ते नाच के फैला देते हैं उसमें कुछ पता ही नहीं रहेगा मुझे कम से कम मुझे पांच बार तक के मेरे भगवत है काम भर जाएगा सब अकेले कर देगा मैं दो बहन ने खेली गाँव में अवस्था मैंने देख भी पाया अवस्था वो शायद कमजोर है और कमजोर है कि बुद्धि कमजोर है कि कैसे कर रहे हैं तो हमारे पास सब तो धान भी बस धान कुछ है और फिर कहा कि अभी लाइट चुका है तो रास्ता अभी बाकी रहेगा जाने रहे हो बस सब ले जाएगा तो कहा तुम्हारे तो भूखे मरे भूखे मरे तो समझ के अरे वो टाइम काफी पांच बजे खरीदी थी एक रुपया दो रुपया तो रहे थे

समझ लिया कि बैंक अच्छा से एक रुपया कर दिया है, एक रुपया पूरे बोरी को पचास कर रहा है, इससे ज्यादा ले रहा है। अब जब तक छोटा बड़ा कारखाना ना है आगे वो दिन के पहाड़ा बीस तक के फिर मतलब पास नहीं कर रहे उम्री पर परीक्षा करा है तभी तो जब तक छोटा बड़ा काका काका बछड़िया जब तक बिना हेरे न दिखते तो बिना हेरे न बता देता पूछा है उसको बोल कम अच्छा फोट फोट अच्छा चिन्ह वो सब अच्छा चिन्ह देते तब जाकर ये त्रास लोग अपना करा है और ये टाइम वहाँ पर लेके पढ़े लड़का जाने के लिए करते हैं दो क्लास तीन क्लास बड़ा चल महिला बड़ा चल महिला बड़ा कारण रहता है।

0: तो जब आना अनुसार तो अब आज के बाद आज से सोचा था स्टार्टिंग तो प्रति की बड़ा अंतर है और वो जब आना नंबर के दिन वो जब आना मंगल 4025 पैसा लेके ये बूटा मेरा जब रात है तो 25 पैसा लेके हमने जीरा खरीदे 25 पैसा तो 25 पैसा में हमने भूजा खरीद ली। हाँ और हिरोना झूठ दी वो जमाना गया तो अपना क्या सस्ते सस्ता का अगर आज समाज के बात होती तो सस्ता में वो साइड के शुक्र मानते हैं ये सोचिए अगर ले तो कपड़ा तो एक घंटे में तो तुम मजा से समझ रहे तो आप जान दिया चुका आ जाते हैं वो
1: जमाना।
0: अरे धान तक 200 रुपये कुंटल बारह दिया खाना अपनी बेच रहे हो 200 रुपये कुंटल देते हैं तो खाए बड़ा बनता बेच रहे हो चना मसूरी तो तार समझ लो 500 से 1000 रुपये
1: कुंटल
0: खरीदी पार्लर से ही था मोदी जे को ढेर पैसा कहे 6-7 कुंटल और बिना तो नहीं अपना और आज का संध्या दे तो

0: पहले तो प्रोग्राम मिलन लगे आपको काम क्यों मिलन जाता है हमारा अवगर मिलन आता है सब एक सब फूटा जाता है सब हमने अपने भाई बंधु फूट दिखाए
1: हाँ कोई मेरे बिना कुछ नहीं आप शांत हो बैठा
0: उधर को मिला कर व्यवहार
2: और
0: तो क्रिकेट वाला को तो ना

0: के सेवा पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी, नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में वृद्धि हुई है। यहाँ पर कोनो स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरल का कार्य से कौशल्य अस्पताल वास्तविक में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से तेजना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रतिदिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा पैरालाइसिस मुंह बांध बिना नशा दाग बैलक हाथ बड़ा अन्य चलना बिरामी कटकला फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी विधि से उपचार कैदी था
0: नशा दाग बैलक बिरामी के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कैदी था असहाय नागरिक एक कर महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक होकर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैदी था कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय कोर्ट 11/14

समझाऊंगी, हमारे यहाँ पे हम लोग, और भाई इस प्रश्न को ये जो है ना, मैं नहीं ना, मैं खास नहीं कि क्या हो, एक छोटी समझाऊं, हमारे

0: किशोरी को ना कोई नौकर कमी अर्थात रफ्तार पता दे पड़ा रफ्तार पता हमने इस सदर कटकर आए लगने तो कहेगा अनुभव से कमरे हो पढ़ाई में ध्यान नहीं देने समझते नहीं रफ्तार पता मुझे पता क्या काइस का पाक दार गुड़िया आरा मच्छी शिकार वो फल फूल आरोग्य खाना नियमित रूप पकाई जंक फूड का अभावी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ बनी से का ढाल हो रेडियो गुरुबाबा एफ एम का सहकार स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रिया से जनहित में जारी संदेश खाना छह महीना पास अनिवार्य शुरू करे अन्न केलाबुटी साग सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खाना रहे बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरक खाना सब समय दुई वर्ष समय इस संस्कार जारी करी
1: सहकार स्वास्थ्य कार्य प्रक्रिया से जल्दी जारी संदेश।

सहरमुनो अवश्य चार बने कछम आपका चावने मार्गन विशाखा चीजे उनके पास सफेद को अवश्य चार बने कछम आगामी अवश्य चार बने करता के तमिल कोई छुपा धन्यवाद।

प्रशासन कार्य पर बेह खानों को खड़े पानी नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करवा परिवहन नगर पालिका एक प्रति करवा इंद्रपुर का 17 वर्षीय सुविचार फार्मा प्रमुख जिला अधिकारी भुवन बहादुर हमल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अशोक कुमार भंडारी और प्रशासकीय अधिकृत लोक प्रसाद थका गटे निवास नागरिकता हस्तांतरण कर प्रमुख जिला अधिकारी हमार के अनुसार नागरिकता परिणाम उमेर पुग्न सके निरंतर नगर गंभीर चोट लगता जिला प्रशासन कार्य में पुगने क्षेत्र अवस्था अलग जानकारी मधुबन नगर पालिका कपड़ा अध्यक्ष मीन थापा कराई पास नामा सेवक प्रदान कई जिला को नागरिकता हस्तांतरण करती प्रमुख जिला अधिकारी हमार सुदीक्षा का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रकरण समेत घरबाट सुरक्षा का बाबा राम किशन थारू अनुसार करीब 1.5 महीना घर छोटकी जनवरी स्थित झुंडियापुर में से हसबे सुदीक्षा का मेरुदंड उद्घाटन वहां हाल सेवा का क्रम में हत्या में सीमित रहते परिवार बसिन कठिन परिस्थिति में जिला प्रशासन कार्यालय खराब पोखरा नागरिक उपलब्ध तैयक में खुशी व्यक्त करवाद लुम्बिनी प्रदेश थार समुदाय का प्रथागत परम्परा संरक्षण तथा प्रवर्धन करना संबंध में व्यवस्था का अभ्यंगन विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभा में से पारित होगा। यह विषय में विस्तृत जानकारी के बाद हमारे संसदीय ओम प्रकाश गुप्ता लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इंद्रजीत थार से पुष्ट बाजार।

0: दी अन्न केरा गोली साग सब्जी फल फूल सहित पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म संसार जाने
1: कार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रिया चलचित्र जारी सन्देश।

तभी संतुलित खाना खाई, व्यायाम सत्य करी, धूम्रपान वगैरह में से दूर रही, तनावना नियंत्रण करी, आज निर्भय कार्य जीवन अतरा निशाना रोग में से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुमा कार्यक्रम का सहकार्य में स्वास्थ्य

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

संभव इंतकाम आजों को विधवा प्रधानमंत्री सहारे निर्माण क्षेत्र का समस्या भौतिक पूर्वाधार विकास लगन वातावरण तथा आर्थिक सुधार का संबंध में छलफल सहभागी बताया।